0: अभी आप श्यामा संगीत सुन रहे थे। आज के कलाकार थे तिमिर घोष। यह रागम 2400 घंटे सातों दिन हिंदुस्तानी संगीत। हिंदुस्तानी संगीत के तहत आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम, और भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं श्यामा संगीत। लीजिए, प्रस्तुत है अमियांशु मुखोपाध्याय का गाया श्यामा संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू श्यामा संगीत बाय आवर आर्टिस्ट तिमिर घोष। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। कंक्लूडिंग द प्रोग्राम दिस इवनिंग वी प्रेजेंट श्यामा संगीत बाय आवर आर्टिस्ट अमियांशु मुखर्जी।

0: अभी आप भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में श्यामा संगीत सुन रहे थे। कलाकार थे अमियांशु मुखोपाध्याय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू श्यामा संगीत। आवर आर्टिस्ट वॉज अमियांशु मुखर्जी। दिस प्रोग्राम वॉज अर्लियर रिकॉर्डेड एंड प्रोड्यूस्ड इन द स्टूडियोज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता फॉर रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं पंडित अरुण भादुड़ी का ख्याल गायन राग गुणकेली. तो लीजिए प्रस्तुत है राग गुणकेली में ख्याल. कलाकार पंडित अरुण भादुड़ी.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी फर्स्ट प्रेजेंट आ हिंदुस्तानी वोकल रेंडिशन. Listen to a khayal in Raag Goon Keli. Our artist this morning, Pandit Arun Bhaduri. Now, listen to a khayal in Raag Goon Keli by Pandit Arun Bhaduri.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग गुणकेली में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे पंडित अरुण भादुड़ी। ये है रागम, चौबीसों घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आइए अब सुनते हैं राग रामकेली में ख्याल गायन। आज की कलाकार हैं कुहू गंगोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित सुजीत साहा और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं सनातन गोस्वामी। राग रामकेली में ख्याल, कलाकार कुहू गंगोपाध्याय।
1: यू आर लिस्निंग टू ख्याल इन राग गुणकेली बाय पंडित अरुण भादुड़ी। दिस इज रागम 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present a khayal in Rag Ramkeli. Our artist, Kuhu Gangopadhyay. Accompanying on the tabla, Pandit Sujit Saha, and on the harmonium, Sanatan Goswami. Now, listen to a khayal in Rag Ramkeli by Kuhu Gangopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग रामकेली में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज की कलाकार थी कुहू गंगोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित सुजीत साहा और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे सनातन गोस्वामी। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You are listening to a khayal in Rag Ramkeli by Kuhu Gangopadhyay, accompanying on the tabla Pandit Sujit Saha and on the harmonium Sanatan Goswami. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam, 24/7 anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं जलतरंग वादन, कलाकार है मिलिंद तुलणकर। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग मधुकम सुनते हैं। आलाप जोड़ और झाला मध्यलय रूपक में है और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है गणेश तानवड़े। तो आइए सुनते हैं मिलिंद तुलणकर द्वारा प्रस्तुत जलतरंग पर राग मधुकंस।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे जलतरंग पर राग मधु कंस। कलाकार थे मिलिंद तुलणकर। आपके साथ तबले पर थे गणेश तानवे। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं मिलिंद तुलणकर द्वारा प्रस्तुत जलतरंग पर राग भूप।

पाल तोड़ी, आलाप जोड़ और झाला विलंबित मत्त ताल में निबद्ध है और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है गणेश तानवड़े, तो आइए सुनते हैं मिलिंद तुलणकर द्वारा प्रस्तुत जल तरंग पर राग भूपाल तोड़ी।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे जल तरंग पर राग भूपाल तोड़ी। कलाकार थे मिलिंद तुलणकर। आपके साथ तबले पर थे गणेश तानवड़े। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग नटभैरव में आलाप जोड़ और झाला. विलंबित और द्रुतगत तीन तालमनिबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है हसीन अहमद खान ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ सितार रिसाइटल बाय सुनीरा कासलीवाल. She is accompanied on the tabla by Haseen Ahmad Khan. You will first listen to Rag Nat Bhairav, in which you will hear Alap, Jod and Jhala, followed by Vilambit and Drutgat set to Teen Tal.

0: अभी आप सुन रहे थे सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग नट भैरव। तबले पर आपकी संगति की थी हसन अहमद खान ने। और लीजिए अब सुनिए राग शुद्ध सारंग में आलाप। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है हसीन अहमद खान ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग नट भैरव सुनीरा कासलीवाल। नेक्स्ट प्रेजेंट्स राग शुद्ध सारंग in which you will hear the alap followed by vilambit and drutgat set to teen taal.

0: अभी आप सुन रहे थे सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग। तबले पर आपकी संगति की थी हसीन अहमद खान ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग शुद्ध सारंग वी कम टू द एंड ऑफ द सितार रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय सुनीरा कासलीवाल। शी वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय हसीन अहमद खान। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, आपने ट्यून किया है रेडियो चैनल रागम 2400 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. आप सभी का कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं. सुनते हैं मिश्रवाद्य संगीत. मिश्रवाद्य संगीत के इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं सरोद वादन से. कलाकार है अबोली सुलाखे. अबोली सुलाखे सरोद पर प्रस्तुत कर रही है राग अहिर भैरव. आलाप, जोड़ तथा मध्यलय और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है. आपके साथ तबले पर संगत रहे हैं गणेश तानवड़े. सुनते हैं अबोली सुलाखे का सरोद पर बजाया हुआ राग अहिर भैरव.

श्रोताओ, हम सुन रहे थे अबोली सुलाखे का सुरवादन, राग था अहिर भैरव। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गणेश तानवड़े। शास्त्रीय वाद्य संगीत का ये कार्यक्रम जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं सितार वादक, कलाकार है संध्या आपटे। संध्या आपटे सितार पर प्रस्तुत कर रही है राग मियां की तोड़ी। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है प्रशांत पाठक। सुनते हैं संध्या आपटे का सितार पर बजाया हुआ राग मियां की तोड़ी।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे संध्या आपटे का सितार वादन राग था मियां की तोड़ी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांत फाटक। यह आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं झप ताल और रूपक ताल में तबला वादन. आज के कलाकार हैं सुब्रतो मन्ना. आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं कामलाक्ष मुखोपाध्याय. सुब्रतो मन्ना अपने तबला वादन का प्रारंभ झप ताल से कर रहे हैं. तो ये सुनते हैं झप ताल में तबला वादन. कलाकार सुब्रतो मन्ना.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल्स. लिसन फर्स्ट टू अ तबला रिसाइटल इन झप ताल फॉलोड बाय रूपक ताल. Our artist is Subrato Manna. Accompanying our artist on the harmonium is Komalaksha Mukhopadhyay. Listen now to the tabla in Jhap Taal, followed by Rupak Taal. Our artist, Subrato Manna.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन। कलाकार हैं रत्नाकर पाई, राग है ललित, विलंबित ख्याल झपताल में निबद्ध है, बोल है घटन लाग रैन, द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बंदिश के बोल है पीयू पीयू रटत पपी हरा।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी ख्याल गायन, कलाकार थे रत्नाकर पाई, संगत कलाकार थे तबले पर इस्माइल दद्दू खां और सारंगी पर समद खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ख्याल रिसाइटल बाय रत्नाकर पाई। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला एंड समद खां ऑन द सारंगी। This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

राग चारू किशन, वादक कलाकार थे अभिजीत राज चौधरी। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया सरोद पर राग मिश्र। नाउ यू आर लिसनिंग श्री अभिजीत राय चौधरी इन सर।

0: ये है रागम 24 घंटे रातोदिन DTH अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे अभिजीत राय चौधरी का बजाया सरोद पर राग मिश्र भैरवी। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से। दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू आर लिसनिंग सरोद बाय अभिजीत राय चौधरी। प्रोग्राम वॉज कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल
1: इंडियन ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳತಿಯರೇ, ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ.

0: ಕೊಡುವಟ್ಟಿಲ್ಲ
1: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
2: नमस्कार श्रोताओं, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं समर्थ रामदास की भक्ति रचना कुमुदिनी पेडणेकर के स्वर में।